सुमुरदुआ मालो सा जो शाओ मांग वो छे मालो सा जो शालान्याओ उच्छेदा दुमालो साजो शाला जा सुम खाजी मालो जाला ये मांग उच्छे खाजी मालो जाला ये लाल शाला न्या